वाह, महफिल में तेरे हुस्न का, तेरे हुस्न का शोला जो भड़ के, शोला जो भड़ के, पहलू में बेफरार दिल, बेफरार दिल, ओ कैसे न धर।

0: तो शम्मा
1: ओ यम्मा यम्मा यम्मा तू परवाना मैं शम्मा
0: ओ यम्मा यम्मा यम्मा मैं परवाना तू शम्मा
1: यम्मा यम्मा

0: बॉलीवुड क्लासिक से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।
1: दिलबरा जब तेरा नाम।